0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। कुमामोतो प्रिफेक्चर की हकूमत का कहना है कि 28 जुलाई को आने वाले शदीद जलजिले के नतीजे में 38 हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। प्रिफेक्चर के डिजास्टर रिस्पांस हेडक्वार्टर्स ने मैग्नीट्यूड 7.1 के जलजिले से होने वाले नुकसान के आदाद शुमार जारी किए हैं। इनकी तस्दीक जुमेरात की सुबह 7:30 बजे तक हो चुकी थी। इतवार के बाद से हलाकतों की तादाद में कोई तब्दीली नहीं आई है। हुकाम का कहना है कि इन आदाद व शुमार में एक ऐसा शख्स भी शामिल है जिसके बारे में शुबा है कि वह आफत के बाद की वजूहात से जान की बाजी हार गया। आदाद व शुमार से मालूम हुआ है कि 6,899 अफराद प्रीफेक्चर के 130 इनखलाई पनाहगाहों में मुकीम हैं। ईरान और ओमान आबनाए हुर्मस में जहाजरानी के रास्ते पर एक मुहाइदे के करीब हैं। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बुकाई ने बुध के रोज कहा कि वो एक मुश्तरका बयान को हतमी शक्ल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ्रिकैन रूट के जोग्राफियाई मुतनासिक यानी हदूद अरबा पर समझौते पर पहुंच गए हैं, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि मखसूस तीसरे फरीक इस अमल में रुकावट न डालें। बुकाई ने कहा कि ईरान ने तकनीकी सलामती और दीगर अमूर का जायजा लिया है। उन्होंने आबनाई की बंदिश का जिम्मेदार अमरीका और इसराइल को ठहराते हुए कहा कि उनकी फौजी जारहियत का नतीजा है। तर्जुमान ने कहा कि सिर्फ ईरान और ओमान के दरमियान ये समझौता आबनाई में महफूज जहाजरानी को यकीनी नहीं बना सकता, क्योंकि अमरीका अब भी सलामती के लिए खतरा है। अमरीका चीन पर तिजारती पाबंदियों को बढ़ाता आया है और अब बीजिंग में हुकाम का कहना है कि वो जवाबी इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि वो अमरीका के लिए ड्रोन्स पर बरामदी कंट्रोल सख्त कर रहे हैं। हुकाम ने बुध को जाब्तों के बारे में ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ड्रोन्स कलीदी पुर्जाजात और मुतालिका टेक्नोलॉजी समेत सिविलियन और फौजी दोनों शोबों में काबिल इस्तेमाल बावर की जाने वाली बरामदात को सख्त निगरानी का सामना करना पड़ेगा। बीजिंग ने 6 ऐसी अमरीकी तंजीमों पर भी पाबंदियां आयद की हैं जिन पर उसने चीन के सिंकियांग विगोर नीम खुद मुख्तार इलाके पर गैर कानूनी अमरीकी पाबंदियों की हिमायत करने का इल्जाम लगाया है। इसके नतीजे में इन कंपनियों के चीनी तंजीमों और अफराद के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लग गई है। चीनी वजारत तजारत के तर्जुमान ने जोर देकर कहा कि ये इकदाम मजमुई तौर पर महदूद रखे गए हैं और अमरीका से इसरार किया कि वो अपनी पाबंदियां वापस ले।
1: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुईं।

ये NHK World जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 7 अगस्त शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानो से सुने समाचार। जापान के दक्षिण पश्चिमी द्वीप एक भीषण तूफान की चपेट में आ गए हैं। मौसम अधिकारी प्रचंड हवाओं, ऊंची लहरों, भूस्खलनों और तूफान संबंधी अन्य आपदाओं के प्रति आगाह कर रहे हैं। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार शुक्रवार शाम 5 बजे तक डॉल्फिन तूफान के ओकिनावा प्रिफेक्चर के नागो शहर के निकट होने का अनुमान था। ये लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। डॉल्फिन तूफान के केंद्र के पास लगातार 162 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि इसके झोंकों की अधिकतम गति 216 किलोमीटर प्रति घंटा है। शुक्रवार को ओकिनावा में अधिकतम 162 किलोमीटर प्रति घंटे जबकि खागोशिमा प्रिफेक्चर के अमामी क्षेत्र में 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निरंतर हवाएं चलने का अनुमान है। ओकिनावा और अमामी में तेज झोंकों की रफ्तार 216 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ओकिनावा और अमामी में कुछ मकानों को नुकसान पहुँचाने वाली प्रचंड हवाएँ चल सकती हैं। मौसम अधिकारी ओकिनावा और अमामी के निवासियों से प्रचंड हवाओं, ऊंची लहरों, भूस्खलनों, निचले इलाकों में बाढ़ और नदियों में उफान के प्रति उच्च सतर्कता बरतने का आग्रह कर रहे हैं। जापान के कुमामोतो प्रिफेक्चर में आए भीषण भूकंप के 10 दिन बाद भी 36,000 से अधिक घरों में जलापूर्ति ठप है और इस महीने के अंत तक इसके पूरी तरह से बहाल होने की उम्मीद भी नहीं है। प्रीफेक्चर के अधिकारियों के अनुसार भूकंप के कारण लगभग 1,08,000 घरों में जलापूर्ति ठप हो गई थी, लेकिन इसे धीरे धीरे बहाल किया जा रहा है। इसके बावजूद यात्सुशिरो और उकी शहरों तथा हिकावा और कोसा नगरों के लगभग 36,880 घरों में पानी अब भी नहीं आ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि उपचारित जल भंडारण सुविधाओं की मरम्मत का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन घरों से जुड़ी पाइपों को हुए नुकसान के कारण जलापूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही है। ईरान के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में नए जहाजरानी मार्गों को लेकर ओमान के साथ बातचीत अंतिम चरण में है। वहीं ईरान के एक मीडिया केंद्र का कहना है कि योजना में चुंगी और सेवा शुल्क शामिल हो सकते हैं। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने इस मामले से संबद्ध विदेश मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से कहा कि ईरान जहाज़ों का प्रवेश नियंत्रित करेगा और ओमान के साथ मिलकर उनकी निकासी का प्रबंधन करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि फारस की खाड़ी में प्रवेश करने वाले जहाज ईरान के पास से गुजरने वाले उत्तरी मार्ग का उपयोग करेंगे, जबकि खाड़ी से बाहर निकलने वाले जहाज ओमान के पास से गुजरने वाले दक्षिणी मार्ग का उपयोग करेंगे। कुछ समय बाद सभी जहाज एक मध्यवर्ती मार्ग पर चलने लगेंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि जहाज़ों को बीमा और ईंधन भरने जैसी समुद्री सेवाओं के साथ साथ पर्यावरणीय लागत का भुगतान भी करना होगा। इस योजना का विरोध हो रहा है। CNN ने खबर दी है कि जहाजरानी उद्योग से जुड़े 8 प्रमुख समूहों ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को एक खुला पत्र भेजकर प्रस्तावित चुंगी और शुल्क अस्वीकार करने का आग्रह किया है।
1: ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में जन्मे बच्चों के लिए स्वतः नागरिकता को सीमित करने का एक और प्रयास किया है। ट्रंप ने बृहस्पतिवार को 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। मौजूदा नियमों के तहत माता पिता की नागरिकता चाहे जो भी हो, अमेरिका में पैदा बच्चों को अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है। एक आदेश में प्रसव पर्यटन पर नकेल कसने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। गौरतलब है कि गर्भवती महिलाएं अस्थायी वीजा पर अमेरिका की यात्रा करती हैं ताकि वे बच्चों को वहां जन्म देकर उन्हें अमेरिकी नागरिकता दिला सकें। एक अन्य आदेश में विदेशी आतंकी गुटों के सदस्यों के
2: अमेरिका में पैदा बच्चों को नागरिकता देने से इनकार किया गया है। पिछले साल जनवरी में वर्तमान कार्यकाल के पहले दिन ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे जिसका उद्देश्य उन बच्चों के लिए जन्मजात नागरिकता को समाप्त करना था जिनके माता पिता अमरीका में गैरकानूनी रूप से या अस्थायी रूप से रह रहे थे। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस साल जून में फैसला सुनाया कि ये आदेश असंवैधानिक है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का कहना है कि वे इस साल के अंत में भारत में अपने निर्वासन से बांग्लादेश लौटने की योजना बना रही हैं। सत्ता से बेदखल किए जाने के 2 साल पूरे होने के अवसर पर हसीना ने बुधवार को नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में ऑनलाइन भाग लिया। उन्होंने कहा, चाहे मेरे भाग्य में जो भी हो, मैं अपने लोगों के पास लौटूंगी। मुझे पता है कि वे मुझे जेल में डाल सकते हैं या मुझे मार सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे वापस जाना होगा। छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के कारण 2024 में हसीना की सरकार गिर गई थी और उन्हें पद से हटना पड़ा था। इसके बाद वे भारत भाग गई थीं। तब से वे भारत में निर्वासन में रह रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2025 में हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी क्योंकि उन्होंने छात्र विद्रोह को दबाने का आदेश दिया था जिसमें लगभग 1,400 लोगों की जान चली गई थी। एनएचके के अनुसार एक रिक्रूटमेंट कंपनी के सर्वेक्षण से पता चलता है कि कार्यस्थल पर एआई के बढ़ते प्रचलन के बीच जापान में नौकरी बदलने वाले लगभग आधे युवा ब्लू कॉलर नौकरियों में रुचि रखते हैं। गाकुजो कंपनी ने जुलाई से अगस्त के बीच 20 से 29 वर्ष की आयु के उन नौकरी पेशा लोगों का ऑनलाइन सर्वेक्षण किया जो नौकरी बदलने पर विचार कर रहे थे। लगभग 200 लोगों ने जवाब दिया। वितरण या भवन निर्माण स्थलों पर काम करने की मंशा के बारे में पूछे जाने पर 40.5% ने कहा कि उन्होंने नौकरी बदलकर ऐसी जगहों पर काम करने के बारे में कभी विचार नहीं किया है, जबकि 48% ने कहा कि उन्होंने इस पर विचार किया है या आवेदन किया है या इसमें कुछ हद तक रुचि रखते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि जेनरेटिव एआई के व्यापक उपयोग से क्लेरिकल और गैर पेशेवर नौकरियों में कमी आएगी, तो 84.7% ने हाँ में जवाब दिया। सर्वेक्षण के नतीजों से साफ है कि नौकरी तलाश रहे युवाओं के बीच चिंता है कि डेस्क वर्क और क्लेरिकल काम ज्यादा से ज्यादा एआई करेगा। गाकुजो कंपनी के अनुसार एआई के युग में अपने पेशेवर जीवन को लेकर कई युवा कर्मचारी इतने चिंतित हैं कि वे ऐसे कामों में रुचि ले रहे हैं जिन्हें एआई नहीं कर सकता। कंपनी को लगता है कि ये रुझान मुख्य रूप से युवाओं में और बढ़ सकता है। ब्लू कॉलर नौकरियों के प्रति बढ़ती रुचि के पीछे एक अन्य कारण इन क्षेत्रों में वेतन वृद्धि को माना जा रहा है।
1: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 23वें पाठ में अपनी पसंद बताना सीखेंगे।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो होक्काइडो घूमकर टोक्यो वापस आ चुकी है। टोक्यो में वो अपने दोस्तों आयाका और माइक के साथ एक कैट कैफे में आई है। माइक अमरीकी है और जापान की पॉप संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानता है।
0: कैट कैफे ऐसी दुकानें होती हैं जहां आप चाय या कॉफी का आनंद लेते हुए बिल्लियों के साथ खेल सकते हैं।
1: तो आइए सुनते हैं 23वें पाठ की बातचीत।
2: ご飯を食べています。本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले ताम ने बिल्लियों को देखते हुए कहा,
1: कितनी प्यारी है।
2: मीना गोहान ओ टबेते इमास।
1: सब खाना खा रही हैं।
0: फिर आयाका बोली,
2: होंतो नी कावाई ने।
1: सचमुच प्यारी हैं।
0: उसके बाद आयाका ने बिल्लियों को आवाज लगाई,
2: ओइदे ओइदे।
1: इधर आओ इधर आओ।
0: आयाका ने अपने पास आई बिल्ली को पुचकारते हुए कहा,
2: वाताशी वा कोनो को गा सुकी।
1: मुझे ये वाली पसंद है।
0: फिर ताम ने दूसरी बिल्ली को सहलाते हुए कहा,
2: वताशी वा कोनो नेको गा सुकी देसु।
1: मुझे ये बिल्ली पसंद है।
0: माइक भी माहौल का आनंद ले रहा था। वो बोला,
3: नेको कैफे ते रिलैक्स देकिरु योने।
0: कैट कैफे आकर बहुत सुकून मिलता है ना।
1: तब ताम ने जवाब दिया,
2: होंतो देसु ने।
1: सही कहा।
0: कैट कैफे में आमतौर पर अलग अलग तरह की बिल्लियां होती हैं। आप भी उनमें से अपनी मनपसंद बिल्ली के साथ खेल सकते हैं।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
2: वाताशी वा कोनो नेको गा सुकी देसु।
1: यानी मुझे ये बिल्ली पसंद है। ये वाक्य याद करके आप अपनी पसंद बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
4: वाताशी
0: का अर्थ है मैं और उसके बाद लगा है वा जो विषय सूचक कारक है। उसके बाद आया है
4: नेको
0: यानी बिल्ली।
4: कोनो नेको
0: का अर्थ है ये बिल्ली।
1: आगे है

0: 好きです。
1: जिसमें से
0: 好き
1: एक ना विशेषण है और उसका मतलब है पसंद।
2: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चीज पसंद हो उसके नाम के बाद कारक गा लगाते हैं और उसके बाद बोलते हैं
0: 好きです。
2: अगर आपको बिल्लियां यानी
0: नेको
2: पसंद हैं तो वाक्य बनेगा
0: नेको गा好きです。
1: ध्यान रखिएगा कि नेको ओ好きです बोलना सही नहीं है।
0: 好きです
1: का
0: 好き
1: यानी पसंद क्रिया नहीं है, ना विशेषण है। विशेषण जिस चीज की विशेषता बताता है उसके नाम के बाद कारक ओ नहीं गा लगाया जाता है।
2: अगर हम आयाका की पंक्ति पर ध्यान दें तो उसने भी कहा था वाताशी वा कोनो को गा सुकी, जिसका अर्थ है मुझे ये वाली पसंद है।
1: करीबी मित्र से बात करते समय आप अंत का
0: डेस
1: छोड़ सकते हैं और
0: स्की डेस
1: की जगह सिर्फ
0: स्की
1: बोल सकते हैं।
2: एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि ताम और आयाका दोनों ने अपने वाक्य में वाताशिवा यानी मैं लगाया, लेकिन हम आपको पिछले पाठों में बता चुके हैं कि अगर संदर्भ स्पष्ट हो तो ये शब्द बोलने की जरूरत नहीं होती है।
1: यहाँ ताम और आयाका अपनी अपनी पसंद बता रही हैं और इस बात पर जोर दे रही हैं कि उनकी पसंद एक दूसरे से अलग है। जैसे ताम ने कहा
0: वाताशिवा कोनो नेको गा स्की देस,
1: यानी मुझे ये बिल्ली पसंद है। यहाँ उसने खास तौर से कहा
0: वाताशी वा।
2: तो अब उच्चारण का अभ्यास करते हैं, सुनिए और दोहराइए।
0: स्की देस, कोनो नेको गा स्की देस, वाताशी वा कोनो नेको गा स्की देस।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें मनपसंद खाने की चीज की बात हो रही है।
3: तबेमोनो वा नानी गा स्की देस का?
4: सुशी गा स्की देस।
2: इस बातचीत में पहले पुरुष ने पूछा
3: तबेमोनो वा नानी गा स्की देस का?
2: खाने में क्या पसंद है?
1: यहाँ
0: तबेमोनो
1: का अर्थ है खाना या खाने की चीज। उसके बाद लगा है विषय सूचक कारक वा।
0: नानी
1: एक प्रश्नवाचक शब्द है जिसका अर्थ है क्या। तो
0: नानी गा स्की देस
1: का अर्थ है क्या पसंद है।
2: महिला ने उत्तर दिया
4: सुशी गा स्की देस,
1: सुशी पसंद है।
2: सुशी एक जापानी व्यंजन है जो पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है।
1: तो अब ये बातचीत दोबारा सुनिए और उत्तर दोहराइए।
0: तबेमोनो वा नानी गा स्की देस का? सुशी गा स्की देस।
2: अब वाक्य बनाने का अभ्यास करते हैं। मान लीजिए आपको लोकप्रिय जापानी संगीत यानी जे पॉप पसंद है, तो ये बात कैसे बताएंगे? जे पॉप को जापानी में कहते हैं
0: जे पॉप।
2: तो कोशिश कीजिए।
4: J-pop गा स्की देस।
1: अब मान लीजिए आपको जापानी चित्र कथाएं पसंद हैं, जिन्हें जापानी भाषा में कहते हैं
0: मांगा।
1: तो अपनी पसंद बताने की कोशिश कीजिए।
3: मांगा गा स्की देस।
2: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
4: होंतो देसु ने।
0: होंतो
1: है
0: होंतो
1: यानी सही कहा का लघु रूप।
0: होंतो देसु ने
1: का भी मतलब है सही कहा। इस वाक्य का इस्तेमाल किसी के विचार या राय पर सहमति दिखाने के लिए किया जाता है।
2: तो आप भी सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
0: होंतो देसु ने।
1: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
5: कवाई, मिन्ना गोहान ओ तबेते इमास।
6: होंतो नी कवाई ने। ओइदे ओइदे। वाताशी वा कोनो को गा स्की।
7: वाताशी वा कोनो नेको गा स्की देस। 猫カフェってリラックスできるよね。
5: 本当ですね。
8: マイクと一緒にポップカルチャー。
2: अब हम लेकर आए हैं अंश माइक के साथ पॉप संस्कृति, जिसमें आज हम बताएंगे जापान में तरह तरह के दिलचस्प कैफे के बारे में.
1: जापान में ऐसे बहुत सारे कैफे बन गए हैं जहां केवल खाना पीना ही मुख्य आकर्षण नहीं है. ऐसा ही एक उदाहरण है कैट कैफे, जिसका आज के पाठ में जिक्र है.
2: जिन लोगों को उल्लू या खरगोश पसंद हैं, वे उल्लू या खरगोश कैफे में जा सकते हैं. आपकी जापानी भाषा बहुत अच्छी ना भी हो तो भी आप ऐसी जगह नए दोस्त बना सकते हैं, क्योंकि वहां आए सारे ग्राहकों की रुचि एक जैसी होती है.
1: मेड कैफे थोड़े अलग होते हैं. वहां खाना परोसने वाली लड़कियां फ्रेंच मेड जैसे कपड़े पहनती हैं और ग्राहकों को मालिक कहकर संबोधित करती हैं.
2: इसके अलावा जापान में आशी यू कैफे भी हैं, जहां आप गर्म पानी में पैर डालकर बैठ सकते हैं. प्लैनेटेरियम यानी तारामंडल कैफे भी हैं, जहां आप चाय पीते हुए सितारों की दुनिया में खो सकते हैं.
1: इसके अलावा एनीमे और गेम्स पर आधारित कैफे तो हैं ही.
2: तो आप भी जापान में अपना मनपसंद कैफे जरूर ढूंढिएगा.
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा.
2: अगले पाठ में अपनी नापसंद बताना सीखेंगे. तब तक के लिए सायोनारा.

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 7 अगस्त शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानों से सुने समाचार। जापान के दक्षिण पश्चिमी द्वीप एक भीषण तूफान की चपेट में आ गए हैं। मौसम अधिकारी प्रचंड हवाओं, ऊंची लहरों, भूस्खलनों और तूफान संबंधी अन्य आपदाओं के प्रति आगाह कर रहे हैं। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार शुक्रवार शाम 5 बजे तक डॉल्फिन तूफान के ओकिनावा प्रीफेक्चर के नागो शहर के निकट होने का अनुमान था। ये लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। डॉल्फिन तूफान के केंद्र के पास लगातार 162 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि इसके झोंकों की अधिकतम गति 216 किलोमीटर प्रति घंटा है। शुक्रवार को ओकिनावा में अधिकतम 162 किलोमीटर प्रति घंटे जबकि खागोशिमा प्रीफेक्चर के अमामी क्षेत्र में 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निरंतर हवाएं चलने का अनुमान है। ओकिनावा और अमामी में तेज झोंकों की रफ्तार 216 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ओकिनावा और अमामी में कुछ मकानों को नुकसान पहुंचाने वाली प्रचंड हवाएं चल सकती हैं। मौसम अधिकारी ओकिनावा और अमामी के निवासियों से प्रचंड हवाओं, ऊंची लहरों, भूस्खलनों, निचले इलाकों में बाढ़ और नदियों में उफान के प्रति उच्च सतर्कता बरतने का आग्रह कर रहे हैं। जापान के कुमामोतो प्रीफेक्चर में आए भीषण भूकंप के 10 दिन बाद भी 36,000 से अधिक घरों में जलापूर्ति ठप है और इस महीने के अंत तक इसके पूरी तरह से बहाल होने की उम्मीद भी नहीं है। प्रीफेक्चर के अधिकारियों के अनुसार भूकंप के कारण लगभग 1,08,000 घरों में जलापूर्ति ठप हो गई थी, लेकिन इसे धीरे धीरे बहाल किया जा रहा है। इसके बावजूद यात्सुशिरो और उकी शहरों तथा हिकावा और कोसा नगरों के लगभग 36,880 घरों में पानी अब भी नहीं आ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि उपचारित जल भंडारण सुविधाओं की मरम्मत का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन घरों से जुड़ी पाइपों को हुए नुकसान के कारण जलापूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही है। ईरान के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में नए जहाजरानी मार्गों को लेकर ओमान के साथ बातचीत अंतिम चरण में है। वहीं ईरान के एक मीडिया केंद्र का कहना है कि योजना

0: समय चुंगी और सेवा शुल्क शामिल हो सकते हैं। ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी ने इस मामले से संबद्ध विदेश मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से कहा कि ईरान जहाज़ों का प्रवेश नियंत्रित करेगा और ओमान के साथ मिलकर उनकी निकासी का प्रबंधन करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि फारस की खाड़ी में प्रवेश करने वाले जहाज ईरान के पास से गुजरने वाले उत्तरी मार्ग का उपयोग करेंगे, जबकि खाड़ी से बाहर निकलने वाले जहाज ओमान के पास से गुजरने वाले दक्षिणी मार्ग का उपयोग करेंगे। कुछ समय बाद सभी जहाज एक मध्यवर्ती मार्ग पर चलने लगेंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि जहाज़ों को बीमा और ईंधन भरने जैसी समुद्री सेवाओं के साथ साथ पर्यावरणीय लागत का भुगतान भी करना होगा। इस योजना का विरोध हो रहा है। CNN ने खबर दी है कि जहाजरानी उद्योग से जुड़े 8 प्रमुख समूहों ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को एक खुला पत्र भेजकर प्रस्तावित चुंगी और शुल्क अस्वीकार करने का आग्रह किया है।
1: ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में जन्मे बच्चों के लिए स्वतः नागरिकता को सीमित करने का एक और प्रयास किया है। ट्रंप ने बृहस्पतिवार को 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। मौजूदा नियमों के तहत माता पिता की नागरिकता चाहे जो भी हो, अमरीका में पैदा बच्चों को अमरीकी नागरिकता मिल जाती है। एक आदेश में प्रसव पर्यटन पर नकेल कसने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। गौरतलब है कि गर्भवती महिलाएं अस्थायी वीजा पर अमरीका की यात्रा करती हैं, ताकि वे बच्चों को वहां जन्म देकर उन्हें अमरीकी नागरिकता दिला सकें। एक अन्य आदेश में विदेशी आतंकी गुटों के सदस्यों के अमरीका में पैदा बच्चों को नागरिकता देने से इनकार किया गया है। पिछले साल जनवरी में वर्तमान कार्यकाल के पहले दिन ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य उन बच्चों के लिए जन्मजात नागरिकता को समाप्त करना था जिनके माता पिता अमरीका में गैरकानूनी रूप से या अस्थायी रूप से रह रहे थे। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस साल जून में फैसला सुनाया कि ये आदेश असंवैधानिक है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का कहना है कि वे इस साल के अंत में भारत में अपने निर्वासन से बांग्लादेश लौटने की योजना बना रही हैं। सत्ता से बेदखल किए जाने के 2 साल पूरे होने के अवसर पर हसीना ने बुधवार को नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में ऑनलाइन भाग लिया। उन्होंने कहा, चाहे मेरे भाग्य में जो भी हो, मैं अपने लोगों के पास लौटूंगी। मुझे पता है कि वे मुझे जेल में डाल सकते हैं या मुझे मार सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे वापस जाना होगा। छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के कारण 2024 में हसीना की सरकार गिर गई थी और उन्हें पद से हटना पड़ा था। इसके बाद वे भारत भाग गई थीं। तब से वे भारत में निर्वासन में रह रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2025 में हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी, क्योंकि उन्होंने छात्र विद्रोह को दबाने का आदेश दिया था, जिसमें लगभग 1,400 लोगों की जान चली गई थी। NHK के अनुसार एक रिक्रूटमेंट कंपनी के सर्वेक्षण से पता चलता है कि कार्यस्थल पर AI के बढ़ते प्रचलन के बीच जापान में नौकरी बदलने वाले लगभग आधे युवा ब्लू कॉलर नौकरियों में रुचि रखते हैं। गाकुजो कंपनी ने जुलाई से अगस्त के बीच 20 से 29 वर्ष की आयु के उन नौकरी पेशा लोगों का ऑनलाइन सर्वेक्षण किया जो नौकरी बदलने पर विचार कर रहे थे। लगभग 200 लोगों ने जवाब दिया। वितरण या भवन निर्माण स्थलों पर काम करने की मंशा के बारे में पूछे जाने पर 40.5% ने कहा कि उन्होंने नौकरी बदलकर ऐसी जगहों पर काम करने के बारे में कभी विचार नहीं किया है, जबकि 48% ने कहा कि उन्होंने इस पर विचार किया है या आवेदन किया है या इसमें कुछ हद तक रुचि रखते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि जेनरेटिव AI के व्यापक उपयोग से क्लेरिकल और गैर पेशेवर नौकरियों में कमी आएगी, तो 84.7% ने हाँ में जवाब दिया। सर्वेक्षण के नतीजों से साफ है कि नौकरी तलाश रहे युवाओं के बीच चिंता है कि
2: कि डेस्क वर्क और क्लेरिकल काम ज्यादा से ज्यादा एआई करेगा। गाकुजो कंपनी के अनुसार एआई के युग में अपने पेशेवर जीवन को लेकर कई युवा कर्मचारी इतने चिंतित हैं कि वे ऐसे कामों में रुचि ले रहे हैं जिन्हें एआई नहीं कर सकता। कंपनी को लगता है कि ये रुझान मुख्य रूप से युवाओं में और बढ़ सकता है। ब्लू कॉलर नौकरियों के प्रति बढ़ती रुचि के पीछे एक अन्य कारण इन क्षेत्रों में वेतन वृद्धि को माना जा रहा है।
1: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 23वें पाठ में अपनी पसंद बताना सीखेंगे।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो होक्काइडो घूमकर टोक्यो वापस आ चुकी है। टोक्यो में वो अपने दोस्तों आयाका और माइक के साथ एक कैट कैफे में आई है। माइक अमरीकी है और जापान की पॉप संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानता है।
0: कैट कैफे ऐसी दुकानें होती हैं जहां आप चाय या कॉफी का आनंद लेते हुए बिल्लियों के साथ खेल सकते हैं।
1: तो आइए सुनते हैं 23वें पाठ की बातचीत।
2: ご飯を食べています。本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले ताम ने बिल्लियों को देखते हुए कहा,
1: कितनी प्यारी है।
2: मीना गोहान ओ टबेते इमास।
1: सब खाना खा रही हैं।
0: फिर आया का बोली,
2: होंतो नी कावाई ने।
1: सचमुच प्यारी हैं।
0: उसके बाद आया का ने बिल्लियों को आवाज लगाई,
2: ओइडे ओइडे।
1: इधर आओ इधर आओ।
0: आया का ने अपने पास आई बिल्ली को पुचकारते हुए कहा,
2: वाताशी वा कोनो को गा सुकी।
1: मुझे ये वाली पसंद है।
0: फिर ताम ने दूसरी बिल्ली को सहलाते हुए कहा,
2: वाताशी वा कोनो नेको गा सुकी देस।
1: मुझे ये बिल्ली पसंद है।
0: माइक भी माहौल का आनंद ले रहा था। वो बोला,
3: नेको कैफे ते रिलैक्स देखी रियो ने।
0: कैट कैफे आकर बहुत सुकून मिलता है ना।
1: तब ताम ने जवाब दिया,
2: होंतो देस ने।
1: सही कहा।
0: कैट कैफे में आमतौर पर अलग अलग तरह की बिल्लियां होती हैं। आप भी उनमें से अपनी मनपसंद बिल्ली के साथ खेल सकते हैं।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
2: वाताशी वा कोनो नेको गा सुकी देस।
1: यानी मुझे ये बिल्ली पसंद है। ये वाक्य याद करके आप अपनी पसंद बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
4: वाताशी
0: का अर्थ है मैं और उसके बाद लगा है वा जो विषय सूचक कारक है। उसके बाद आया है
4: नेको
0: यानी बिल्ली।
4: कोनो नेको
0: का अर्थ है ये बिल्ली।
1: आगे है
4: स्की देस
1: जिसमें से
4: स्की
1: एक ना विशेषण है और उसका मतलब है पसंद।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चीज पसंद हो उसके नाम के बाद कारक गा लगाते हैं और उसके बाद बोलते हैं
4: स्की देस।
0: अगर आपको बिल्लियां यानी
4: नेको
0: पसंद हैं तो वाक्य बनेगा
4: नेको गा स्की देस।
1: ध्यान रखिएगा कि नेको ओ स्की देस बोलना सही नहीं है।
4: स्की देस
1: का
4: स्की
1: यानी पसंद क्रिया नहीं है, ना विशेषण है। विशेषण जिस चीज की विशेषता बताता है उसके नाम के बाद कारक ओ नहीं गा लगाया जाता है।
0: अगर हम आयाका की पंक्ति पर ध्यान दें तो उसने भी कहा था वाताशी वा कोनो को गा सुकी, जिसका अर्थ है मुझे ये वाली पसंद है।
1: करीबी मित्र से बात करते समय आप अंत का
4: देस
1: छोड़ सकते हैं और
4: स्की देस
1: की जगह सिर्फ
4: स्की
1: बोल सकते हैं।
0: एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि ताम और आयाका दोनों ने अपने वाक्य में वाताशी वा यानी मैं लगाया, लेकिन हम आपको पिछले पाठों में बता चुके हैं कि अगर संदर्भ स्पष्ट हो तो ये शब्द बोलने की जरूरत नहीं होती है।
1: यहाँ ताम और आयाका अपनी अपनी पसंद बता रही हैं और इस बात पर जोर दे रही हैं कि उनकी पसंद एक दूसरे से अलग है। जैसे ताम ने कहा,
4: वाताशी वा कोनो नेको गा सुकी देस,
1: यानी मुझे ये बिल्ली पसंद है। यहाँ उसने खास तौर से कहा
4: वाताशी वा।
0: तो अब उच्चारण का अभ्यास करते हैं, सुनिए और दोहराइए।
4: सुकी देस कोनो नेको गा सुकी देस। वाताशी वा कोनो नेको गा सुकी देस।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें मनपसंद खाने की चीज की बात हो रही है।
0: इस बातचीत में पहले पुरुष ने पूछा,
5: तबेमोनो वा नानी गा स्की देस का?
0: खाने में क्या पसंद है?
1: यहाँ
4: तबेमोनो
1: का अर्थ है खाना या खाने की चीज। उसके बाद लगा है विषय सूचक कारक वा।
4: नानी
1: एक प्रश्नवाचक शब्द है जिसका अर्थ है क्या। तो
4: नानी गा स्की देस
1: का अर्थ है क्या पसंद है।
0: महिला ने उत्तर दिया,
2: सुशी गा स्की देस,
1: सुशी पसंद है।
0: सुशी एक जापानी व्यंजन है जो पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है।
1: तो अब ये बातचीत दोबारा सुनिए और उत्तर दोहराइए।
4: तबेमोनो वा नानी गा स्की देस का? सुशी गा स्की देस।
0: अब वाक्य बनाने का अभ्यास करते हैं। मान लीजिए आपको लोकप्रिय जापानी संगीत यानी जे पॉप पसंद है, तो ये बात कैसे बताएंगे? जे पॉप को जापानी में कहते हैं
4: जे पॉप।
0: तो कोशिश कीजिए,
2: जे पॉप गा स्की देस।
1: अब मान लीजिए आपको जापानी चित्र कथाएं पसंद हैं, जिन्हें जापानी भाषा में कहते हैं
4: मांगा।
1: तो अपनी पसंद बताने की कोशिश कीजिए,
5: मांगा गा स्की देस।
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
2: होंतो देसु ने।
4: होंतो
1: है
4: होंतो
1: यानी सही कहा का लघु रूप।
4: होंतो देसु ने
1: का भी मतलब है सही कहा। इस वाक्य का इस्तेमाल किसी के विचार या राय पर सहमति दिखाने के लिए किया जाता है।
0: तो आप भी सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: होंतो देसु ने।
1: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: कवाई, मिन्ना गोहान ओ तबेते इमासु।
6: होंतो नी कवाई ने। ओइदे ओइदे। वाताशी वा कोनो को गा स्की। वाताशी वा कोनो नेको गा स्की देसु।
3: नेको काफे त्ते रिलैक्सु देकिरु यो ने।
2: होंतो देसु ने।
7: バイクと一緒にポップカルチャ
0: ー。 अब हम लेकर आए हैं अंश माइक के साथ पॉप संस्कृति, जिसमें आज हम बताएंगे जापान में तरह तरह के दिलचस्प कैफे के बारे में।
1: जापान में ऐसे बहुत सारे कैफे बन गए हैं जहां केवल खाना पीना ही मुख्य आकर्षण नहीं है। ऐसा ही एक उदाहरण है कैट कैफे, जिसका आज के पाठ में जिक्र है।
0: जिन लोगों को उल्लू या खरगोश पसंद हैं, वे उल्लू या खरगोश कैफे में जा सकते हैं। आपकी

0: जापानी भाषा बहुत अच्छी ना भी हो तो भी आप ऐसी जगह नए दोस्त बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ आए सारे ग्राहकों की रुचि एक जैसी होती है।
1: मेड कैफे थोड़े अलग होते हैं, वहाँ खाना परोसने वाली लड़कियाँ फ्रेंच मेड जैसे कपड़े पहनती हैं और ग्राहकों को मालिक कहकर संबोधित करती हैं।
0: इसके अलावा जापान में आशी यू कैफे भी हैं, जहाँ आप गर्म पानी में पैर डालकर बैठ सकते हैं। प्लेनेटेरियम यानी तारामंडल कैफे भी हैं, जहाँ आप चाय पीते हुए सितारों की दुनिया में खो सकते हैं।
1: इसके अलावा एनिमे और गेम्स पर आधारित कैफे तो हैं ही,
0: तो आप भी जापान में अपना मनपसंद कैफे जरूर ढूंढिएगा।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में अपनी नापसंद बताना सीखेंगे, तब तक के लिए सायोनारा।

की वेबसाइट है nhk.jp/urdu। उर्दू नशरियात का आगाज हुआ चाहता है, हमारे साथ रहिएगा।

ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क में पैदा होने वाले बच्चों के लिए खुदकार शहरियत के हक को महदूद करने की एक और कोशिश की है। उन्होंने जुमेरात को दो सदारती हुक्मनामों पर दस्तखत किए। मौजूदा कवानीन के तहत मुल्क में पैदा होने वाले बच्चे अपने वालिदैन की कौमियतों से कतअ नज़र अमरीकी शहरी बन जाते हैं। एक हुक्मनामे में बर्थ टूरिज्म के खिलाफ सख्त इकदाम करने की ज़रूरत का हवाला दिया गया है। इस तरह की सियाहत में हामिला खवातीन जचगी के लिए आर्जी वीज़ों पर अमरीका जाती हैं ताकि उनके बच्चे अमरीकी शहरियत हासिल कर सकें। दूसरा हुक्मनामा गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमों के अरकान के यहाँ पैदा होने वाले बच्चों को शहरियत

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: जापान के समय अनुसार 7 अगस्त शुक्रवार रात 11:30 बजे। गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानों से सुने समाचार। जापान के दक्षिण पश्चिमी द्वीप एक भीषण तूफान की चपेट में आ गए हैं। मौसम अधिकारी प्रचंड हवाओं, ऊंची लहरों, भूस्खलनों और तूफान संबंधी अन्य आपदाओं के प्रति आगाह कर रहे हैं। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार शुक्रवार शाम 5 बजे तक डॉल्फिन तूफान के ओकिनावा प्रिफेक्चर के नागो शहर के निकट होने का अनुमान था। ये लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। डॉल्फिन तूफान के केंद्र के पास लगातार 162 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि इसके झोंकों की अधिकतम गति 216 किलोमीटर प्रति घंटा है। शुक्रवार को ओकिनावा में अधिकतम 162 किलोमीटर प्रति घंटे, जबकि खागोशिमा प्रिफेक्चर के अमामी क्षेत्र में 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निरंतर हवाएं चलने का अनुमान है। ओकिनावा और अमामी में तेज झोंकों की रफ्तार 216 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ओकिनावा और अमामी में कुछ मकानों को नुकसान पहुंचाने वाली प्रचंड हवाएं चल सकती हैं। मौसम अधिकारी ओकिनावा और अमामी के निवासियों से प्रचंड हवाओं, ऊंची लहरों, भूस्खलनों, निचले इलाकों में बाढ़ और नदियों में उफान के प्रति उच्च सतर्कता बरतने का आग्रह कर रहे हैं। जापान के कुमामोतो प्रिफेक्चर में आए भीषण भूकंप के 10 दिन बाद भी 36,000 से अधिक घरों में जलापूर्ति ठप है और इस महीने के अंत तक इसके पूरी तरह से बहाल होने की उम्मीद भी नहीं है। प्रीफेक्चर के अधिकारियों के अनुसार भूकंप के कारण लगभग 1,08,000 घरों में जलापूर्ति ठप हो गई थी, लेकिन इसे धीरे धीरे बहाल किया जा रहा है। इसके बावजूद यात्सुशिरो और उकी शहरों तथा हिकावा और कोसा नगरों के लगभग 36,880 घरों में पानी अब भी नहीं आ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि उपचारित जल भंडारण सुविधाओं की मरम्मत का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन घरों से जुड़ी पाइपों को हुए नुकसान के कारण जलापूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही है। ईरान के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में नए जहाजरानी मार्गों को लेकर ओमान के साथ बातचीत अंतिम चरण में है। वहीं ईरान के एक मीडिया केंद्र का कहना है कि योजना में चुंगी और सेवा शुल्क शामिल हो सकते हैं। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने इस मामले से संबद्ध विदेश मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से कहा कि ईरान जहाज़ों का प्रवेश नियंत्रित करेगा और ओमान के साथ मिलकर उनकी निकासी का प्रबंधन करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि फारस की खाड़ी में प्रवेश करने वाले जहाज ईरान के पास से गुजरने वाले उत्तरी मार्ग का उपयोग करेंगे, जबकि खाड़ी से बाहर निकलने वाले जहाज ओमान के पास से गुजरने वाले दक्षिणी मार्ग का उपयोग करेंगे। कुछ समय बाद सभी जहाज एक मध्यवर्ती मार्ग पर चलने लगेंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि जहाज़ों को बीमा और ईंधन भरने जैसी समुद्री सेवाओं के साथ साथ पर्यावरणीय लागत का भुगतान भी करना होगा। इस योजना का विरोध हो रहा है। CNN ने खबर दी है कि जहाजरानी उद्योग से जुड़े 8 प्रमुख समूहों ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को एक खुला पत्र भेजकर प्रस्तावित चुंगी और शुल्क अस्वीकार करने का आग्रह किया है।
1: ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में जन्मे बच्चों के लिए स्वतः नागरिकता को सीमित करने का एक और प्रयास किया है। ट्रंप ने बृहस्पतिवार को 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। मौजूदा नियमों के तहत माता पिता की नागरिकता चाहे जो भी हो, अमरीका में पैदा बच्चों को अमरीकी नागरिकता मिल जाती है। एक आदेश में प्रसव पर्यटन पर नकेल कसने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। गौरतलब है कि गर्भवती महिलाएं अस्थायी वीजा पर अमरीका की यात्रा करती हैं, ताकि वे बच्चों को वहां जन्म देकर उन्हें अमरीकी नागरिकता दिला सकें। एक अन्य आदेश में विदेशी आतंकी गुटों के सदस्यों के अमरीका में पैदा बच्चों को नागरिकता देने से इनकार किया गया है। पिछले साल जनवरी में वर्तमान कार्यकाल के पहले दिन ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे जिसका उद्देश्य उन बच्चों के लिए जन्मजात नागरिकता को समाप्त करना था जिनके माता पिता अमरीका में गैरकानूनी रूप से या अस्थायी रूप से रह रहे थे। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस साल जून में फैसला सुनाया कि ये आदेश असंवैधानिक है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का कहना है कि वे इस साल के अंत में भारत में अपने निर्वासन से बांग्लादेश लौटने की योजना बना रही हैं। सत्ता से बेदखल किए जाने के 2 साल पूरे होने के अवसर पर हसीना ने बुधवार को नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में ऑनलाइन भाग लिया। उन्होंने कहा, चाहे मेरे भाग्य में जो भी हो, मैं अपने लोगों के पास लौटूंगी। मुझे पता है कि वे मुझे जेल में डाल सकते हैं या मुझे मार सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे वापस जाना होगा। छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के कारण 2024 में हसीना की सरकार गिर गई थी और उन्हें पद से हटना पड़ा था। इसके बाद वे भारत भाग गई थीं। तब से वे भारत में निर्वासन में रह रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2025 में हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी क्योंकि उन्होंने छात्र विद्रोह को दबाने का आदेश दिया था जिसमें लगभग 1,400 लोगों की जान चली गई थी। एनएचके के अनुसार एक रिक्रूटमेंट कंपनी के सर्वेक्षण से पता चलता है कि कार्यस्थल पर एआई के बढ़ते प्रचलन के बीच जापान में नौकरी बदलने वाले लगभग आधे युवा ब्लू कॉलर नौकरियों में रुचि रखते हैं। गाकुजो कंपनी ने जुलाई से अगस्त के बीच 20 से 29 वर्ष की आयु के उन नौकरी पेशा लोगों का ऑनलाइन सर्वेक्षण किया जो नौकरी बदलने पर विचार कर रहे थे। लगभग 200 लोगों ने जवाब दिया। वितरण या भवन निर्माण स्थलों पर काम करने की मंशा के बारे में पूछे जाने पर 40.5% ने कहा कि उन्होंने नौकरी बदलकर ऐसी जगहों पर काम करने के बारे में कभी विचार नहीं किया है, जबकि 48% ने कहा कि उन्होंने इस पर विचार किया है या आवेदन किया है या इसमें कुछ हद तक रुचि रखते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि जेनरेटिव एआई के व्यापक उपयोग से क्लेरिकल और गैर पेशेवर नौकरियों में कमी आएगी, तो 84.7% ने हाँ में जवाब दिया। सर्वेक्षण के नतीजों से साफ है कि नौकरी तलाश रहे युवाओं के बीच चिंता है कि डेस्क वर्क और क्लेरिकल काम ज्यादा से ज्यादा एआई करेगा। गाकुजो कंपनी के अनुसार एआई के युग में अपने पेशेवर जीवन को लेकर कई युवा कर्मचारी इतने चिंतित हैं कि वे ऐसे कामों में रुचि ले रहे हैं जिन्हें एआई नहीं कर सकता। कंपनी को लगता है कि ये रुझान मुख्य रूप से युवाओं में और बढ़ सकता है। ब्लू कॉलर नौकरियों के प्रति बढ़ती रुचि के पीछे एक अन्य कारण इन क्षेत्रों में वेतन वृद्धि को माना जा रहा है।
2: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 23वें पाठ में अपनी पसंद बताना सीखेंगे।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो होक्काइडो घूमकर टोक्यो वापस आ चुकी है। टोक्यो में वो अपने दोस्तों आयाका और माइक के साथ एक कैट कैफे में आई है। माइक अमरीकी है और जापान की पॉप संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानता है।
0: कैट कैफे ऐसी दुकानें होती हैं जहां आप चाय या कॉफी का आनंद लेते हुए बिल्लियों के साथ खेल सकते हैं।
1: तो आइए सुनते हैं 23वें पाठ की बातचीत।
2: みんなご飯を食べています。本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。
0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले ताम ने बिल्लियों को देखते हुए कहा,
2: कवाई,
1: कितनी प्यारी हैं।
2: मीना गोहान ओ तबेते इमास,
1: सब खाना खा रही हैं।
0: फिर आया का बोली,
2: होंतो नी कवाई ने,
1: सचमुच प्यारी हैं।
0: उसके बाद आया का ने बिल्लियों को आवाज लगाई,
2: ओइदे ओइदे,
1: इधर आओ इधर आओ।
0: आया का ने अपने पास आई बिल्ली को पुचकारते हुए कहा,
2: वताशी वा कोनो को गा स्की,
1: मुझे ये वाली पसंद है।
0: फिर ताम ने दूसरी बिल्ली को सहलाते हुए कहा,
2: वताशी वा कोनो नेको गा स्की देस,
1: मुझे ये बिल्ली पसंद है।
0: माइक भी माहौल का आनंद ले रहा था। वो बोला,
3: नेको कैफे ते रिलैक्स देखिरियो ने,
0: कैट कैफे आकर बहुत सुकून मिलता है ना।
1: तब ताम ने जवाब दिया,
2: होंतो देस ने,
1: सही कहा।
0: कैट कैफे में आमतौर पर अलग अलग तरह की बिल्लियां होती हैं। आप भी उनमें से अपनी मनपसंद बिल्ली के साथ खेल सकते हैं।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
2: वताशी वा कोनो नेको गा स्की देस,
1: यानी मुझे ये बिल्ली पसंद है। ये वाक्य याद करके आप अपनी पसंद बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
4: वताशी
0: का अर्थ है मैं और उसके बाद लगा है वा, जो विषय सूचक कारक है। उसके बाद आया है
4: नेको
0: यानी बिल्ली।
4: कोनो नेको
0: का अर्थ है ये बिल्ली।
1: आगे है
4: स्की देस,
1: जिसमें से
4: स्की
1: एक ना विशेषण है और उसका मतलब है पसंद।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चीज पसंद हो उसके नाम के बाद कारक गा लगाते हैं और उसके बाद बोलते हैं
4: स्की देस।
0: अगर आपको बिल्लियां यानी
4: नेको
0: पसंद हैं तो वाक्य बनेगा
4: नेको गा स्की देस।
1: ध्यान रखिएगा कि नेको ओ स्की देस बोलना सही नहीं है।
4: स्की देस
1: का
4: स्की
1: यानी पसंद क्रिया नहीं है, ना विशेषण है। विशेषण जिस चीज की विशेषता बताता है उसके नाम के बाद कारक ओ नहीं गा लगाया जाता है।
0: अगर हम आयाका की पंक्ति पर ध्यान दें तो उसने भी कहा था वाताशी वा कोनो को गा सुकी, जिसका अर्थ है मुझे ये वाली पसंद है।
1: करीबी मित्र से बात करते समय आप अंत का
4: देस
1: छोड़ सकते हैं और
4: स्की देस
1: की जगह सिर्फ
4: स्की
1: बोल सकते हैं।
0: एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि ताम और आयाका दोनों ने अपने वाक्य में वाताशी वा यानी मैं लगाया, लेकिन हम आपको पिछले पाठों में बता चुके हैं कि अगर संदर्भ स्पष्ट हो तो ये शब्द बोलने की जरूरत नहीं होती है।
1: यहाँ ताम और आयाका अपनी अपनी पसंद बता रही हैं और इस बात पर जोर दे रही हैं कि उनकी पसंद एक दूसरे से अलग है। जैसे ताम ने कहा,
4: वाताशी वा कोनो नेको गा स्की देसु,
1: यानी मुझे ये बिल्ली पसंद है। यहाँ उसने खास तौर से कहा
4: वाताशी वा।
0: तो अब उच्चारण का अभ्यास करते हैं, सुनिए और दोहराइए।
4: स्की देसु, कोनो नेको गा स्की देसु, वाताशी वा कोनो नेको गा स्की देसु।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें मनपसंद खाने की चीज की बात हो रही है।
5: 食べ物は何が好きですか？
6: 寿司が好きです。
0: इस बातचीत में पहले पुरुष ने पूछा,
5: 食べ物は何が好きですか？
0: खाने में क्या पसंद है?
1: यहाँ
4: 食べ物
1: का अर्थ है खाना या खाने की चीज। उसके बाद लगा है विषय सूचक कारक वा।
4: 何?
1: एक प्रश्नवाचक शब्द है जिसका अर्थ है क्या। तो
4: 何が好きですか?
1: का अर्थ है क्या पसंद है।
0: महिला ने उत्तर दिया,
6: 寿司が好きです。
1: सुशी पसंद है।
0: सुशी एक जापानी व्यंजन है जो पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है।
1: तो अब ये बातचीत दोबारा सुनिए और उत्तर दोहराइए।
4: 食べ物は何が好きですか? 寿司が好きです。
0: अब वाक्य बनाने का अभ्यास करते हैं। मान लीजिए आपको लोकप्रिय जापानी संगीत यानी जे पॉप पसंद है, तो ये बात कैसे बताएंगे? जे पॉप को जापानी में कहते हैं
4: जे पॉप।
0: तो कोशिश कीजिए,
6: जे पॉप गा सुकी देसु।
1: अब मान लीजिए आपको जापानी चित्र कथाएं पसंद हैं, जिन्हें जापानी भाषा में कहते हैं
4: मांगा।
1: तो अपनी पसंद बताने की कोशिश कीजिए,
5: मांगा गा सुकी देसु।
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
2: होंतो देसु ने।
4: होंतो
1: है
4: होंतो,
1: यानी सही कहा का लघु रूप।
4: होंतो देसु ने
1: का भी मतलब है सही कहा। इस वाक्य का इस्तेमाल किसी के विचार या राय पर सहमति दिखाने के लिए किया जाता है।
0: तो आप भी सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: होंतो देसु ने।
1: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: कवाई, मिन्ना गोहान ओ तबे तेइमास।
7: होंतो नी कवाई ने। ओइदे ओइदे। वाताशी वा कोनो को गा सुकी।
2: वाताशी वा कोनो नेको गा सुकी देसु।
3: नेको काफे त्ते रिलैक्सु देकिरु यो ने।
2: होंतो देसु ने।
3: バイクと一緒にポップカルチャ
0: ー。 अब हम लेकर आए हैं अंश माइक के साथ पॉप संस्कृति, जिसमें आज हम बताएंगे जापान में तरह तरह के दिलचस्प कैफे के बारे में।
1: जापान में ऐसे बहुत सारे कैफे बन गए हैं जहां केवल खाना पीना ही मुख्य आकर्षण नहीं है। ऐसा ही एक उदाहरण है कैट कैफे, जिसका आज के पाठ में जिक्र है।
0: जिन लोगों को उल्लू या खरगोश पसंद हैं, वे उल्लू या खरगोश कैफे में जा सकते हैं। आपकी जापानी भाषा बहुत अच्छी ना भी हो तो भी आप ऐसी जगह नए दोस्त बना सकते हैं, क्योंकि वहां आए सारे ग्राहकों की रुचि एक जैसी होती है।
1: मेड कैफे थोड़े अलग होते हैं। वहां खाना परोसने वाली लड़कियां फ्रेंच मेड जैसे कपड़े पहनती हैं और ग्राहकों को मालिक कहकर संबोधित करती हैं।
0: इसके अलावा जापान में आशी यू कैफे भी हैं, जहां आप गर्म पानी में पैर डालकर बैठ सकते हैं। प्लैनेटेरियम यानी तारामंडल कैफे भी हैं, जहां आप चाय पीते हुए सितारों की दुनिया में खो सकते हैं।
1: इसके अलावा एनीमे और गेम्स पर आधारित कैफे तो हैं ही।
0: तो आप भी जापान में अपना मनपसंद कैफे जरूर ढूंढिएगा।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में अपनी नापसंद बताना सीखेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।

144 किलोमीटर फी घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशगोई की गई है। ओकिनावा और अवामी में 216 किलोमीटर फी घंटा तक की रफ्तार से झक्कड़ चलने का इम्कान भी है। कुछ घरों को तबाह कर सकने वाली ताकतवर हवाएं ओकिनावा और अवामी को मुतासिर कर सकती हैं। मौसमियाती हुकाम ओकिनावा और अवामी के लोगों पर जोर दे रहे हैं कि वो तुंदो तेज हवाओं, ऊंची लहरों, लैंडस्लाइडिंग, नशेबी इलाकों में सैलाब, दरियाओं में तुगयानी और उनके किनारों से बह निकलने के खिलाफ इंतहाई चौकस रहें। जापान के कुमामोतो प्रीफेक्चर में 36,000 से जायद घराने इस इलाके में जबरदस्त जल्जले के 10 दिन बाद भी पानी से महरूम हैं। रवा माह के अख्ताम से पहले पानी की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बहाल होने की तो नहीं है। प्रीफेक्चर के हुकाम का कहना है कि जल्जले की वजह से एक मौके पर तकरीबन 1,08,000 घरानों की पानी की सप्लाई मुनकता हो चुकी थी। उनका कहना है कि सप्लाई बतदरीज बहाल की जा रही है, लेकिन यात्सुशिरो और उकी शहरों और हीकावा और कोसा के कस्बों में तकरीबन 36,880 घरों को पानी की फराहमी बदस्तूर मुनकता है। हुकाम का कहना है कि साफ करदा पानी को ज़खीरा करने वाली सहूलियात की मुरम्मत का काम ज़्यादातर मुकम्मल हो चुका है, लेकिन घरों से जुड़े पाइपों को नुकसान पहुंचने के सबब पानी का बहाव ठीक नहीं है। ईरानी हुकाम ने जुमरात के रोज़ कहा कि ओमान के साथ आबनाए हुरमज में जहाज़रानी की नई बहरी गुजरगाहों पर बातचीत हतमी मराहल में है, जबकि एक ईरानी मीडिया इदारे ने बताया कि इस मनसूबे में टोल और सर्विस फीस शामिल हो सकती है। ईरान की फारस न्यूज एजेंसी ने इस मामले पर वजारत खारजा के जरिए का हवाला दिया। उसने कहा कि ईरान बहरी जहाज़ों के दाखिले को कंट्रोल करेगा और ओमान के साथ मुश्तरका तौर पर इनके खरूज का इंतजाम करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि खलीज फारस में दाखिल होने वाले बहरी जहाज़ ईरान के करीब शिमाली रास्ता इस्तेमाल करेंगे, जबकि बाहर निकलने वाले बहरी जहाज़ ओमान के करीब जनूबी रास्ता अख्तियार करेंगे और एक मुद्दत के बाद तमाम जहाज मरकरी रास्ते पर वापस चले आएंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जहाज़ों को बीमा और ईंधन जैसी समंदरी खिदमात के साथ माहौलियाती अखराजात की अदायगी भी करना होगी।

0: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। अब आज की बाकी खबरें समाअत फरमाइए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क में पैदा होने वाले बच्चों के लिए खुद कार शहरियत के हक को महदूद करने की एक और कोशिश की है। उन्होंने जुमेरात को दो सदारती हुक्मनामों पर दस्तखत किए। मौजूदा कवानीन के तहत मुल्क में पैदा होने वाले बच्चे अपने वालिदैन की कौमियतों से कतअ नज़र अमरीकी शहरी बन जाते हैं। एक हुक्मनामे में बर्थ टूरिज्म के खिलाफ सख्त इकदाम करने की ज़रूरत का हवाला दिया गया है। इस तरह की सियाहत में हामिला खवातीन जच्गी के लिए आर्जी वीज़ों पर अमरीका जाती हैं ताकि उनके बच्चे अमरीकी शहरियत हासिल कर सकें। दूसरा हुक्मनामा गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमों के अरकान के यहाँ पैदा होने वाले बच्चों को शहरियत देने से इनकार के बारे में है। अपनी मौजूदा मुद्दत के पहले दिन गुज़िश्ता साल जनवरी में भी ट्रंप ने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे जिसका मकसद अमरीका में गैर कानूनी या आर्जी तौर पर रहने वाले वालिदैन के यहाँ पैदा होने वाले बच्चों के लिए पैदाइशी हक शहरियत को ख़त्म करना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जून में उस हुक्म को गैर आइनी करार दे दिया था। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना का कहना है कि वो इस साल के आखिर में भारत में अपनी जलावतनी ख़त्म करके वतन वापस लौटने का इरादा रखती हैं। इक्तदार से हटाए जाने को 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर हसीना ने बुध को नई दिल्ली में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से टेलीफोन पर खिताब किया। उन्होंने कहा, जैसा भी मुकद्दर मेरा मुंतज़र हो, मैं अपने लोगों के पास वापस जाऊंगी। उनका मजीद कहना था, मैं जानती हूं कि वो मुझे पाबंदे सलासल कर सकते हैं या मुझे कत्ल किया जा सकता है या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन इस सब के बावजूद मुझे वापस जाना है। 2024 में तालिब इल्मों की क़यादत में होने वाले मुजाहरों के सबब उनकी हुकूमत का तख्ता उलट गया था और उन्हें अपना मनसब छोड़ना पड़ा था। शेख हसीना जलावतनी इख्तियार करते हुए भारत चली गई थी और अब तक वहीं मुकीम हैं। अक्वामे मुत्तहदा के मुताबिक उन्हें शोरिश के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म देने पर इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्ज़ाम में 2025 में मौत की सज़ा सुनाई गई थी। क्रैकडाउन में 1,400 अफराद हलाक हो गए थे। NHK को मालूम हुआ है कि एक रिक्रूटमेंट इंफॉर्मेशन कंपनी के सर्वे के मुताबिक जापान में कैरियर तब्दील करने वाले तकरीबन निसफ नौजवान जाए रोज़गार पर मसनूई जहानत के इस्तेमाल में वसत के तनाजुर में मेहनत मुशक्कत वाली मुलाजमतों में दिलचस्पी रखते हैं। गाकुजो नामी कंपनी ने जुलाई से अगस्त तक 20 के पेटे के ऐसे कारकुनों का एक ऑनलाइन सर्वे मुनक़िद किया जो मुलाजमतें तब्दील करने पर गौर कर रहे हैं। कंपनी को तकरीबन 200 जवाबात मौसूल हुए। डिस्ट्रीब्यूशन या तामीराती मकामात पर मुशक्कती काम पर मुंतकिल होने के उनके इरादे के बारे में पूछे जाने पर 40.5% जवाब दहिंदगान का कहना था कि उन्होंने कभी ऐसी तब्दीली पर गौर नहीं किया। 48% ने कहा कि उन्होंने गौर किया है या दरख्वास्त दी है या वो किसी हद तक दिलचस्पी रखते हैं। सर्वे में ये सवाल किया गया था कि क्या उनकी दानिश में तख्लीकी मसनूई जहानत के वसी पैमाने पर राइज होने के सबब क्लैरिकल और नॉन कैरियर मुलाजमतें कम हो जाएंगी। 84.7% ने हाँ में जवाब दिया। ये नतायज बज़ाहिर मुलाजमत के नौजवान मुतलाशियों में इस बहरान के एहसास की अक्कासी करते हैं कि दफ्तरी और क्लैरिकल कामकाज वगैरह के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल बढ़ता चला जाएगा। गाकुजो का कहना है कि बहुत से नौजवान कारकुन मसनूई जहानत के इस दौर में कैरियर बनाने के बारे में इतने परेशान हैं कि वो ऐसे रोज़गार में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे हैं जिसकी जगह AI नहीं ले सकती। सर्वे फर्म ने मजीद कहा कि ये रुझान बुनियादी तौर पर नौजवानों में मजीद फैलने का इम्कान है। बावर किया जाता है कि मेहनत मुशक्क़त वाले रोज़गार में बढ़ती हुई दिलचस्पी की एक और वजह इन शोबों में उजरतों का बढ़ना है।
1: और आखिर में खास खबरों का खुलासा। जापान के जनूब मगरबी जजायर को एक बड़े समुद्री तूफान ने अपनी लपेट में ले लिया है। جاپان کے کوماموتو پریفیکچر میں 36,000 سے زائد گھرانے اس علاقے میں زبردست زلزلے کے 10 دن بعد بھی پانی سے محروم ہے۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔